0: घोड़ा चतुर घोड़ा चतुर एक पे रहना या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना
1: एक चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात अपने ही जाल में फसत जात हम मरत जात अरे चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार अपने ही जाल मेरे मन के द्वार फसत जात।

किन्नी प्यारी आवाज है दोस्तों, और किन्नी दर्द भरी आवाज है। गल इस तरह भाई 1971 जदों पुलिस दे स्पैशल स्टाफ ने उदासी जी नूं गिरफ्तार किया ते शरीरक ते मानसिक अन्ना तशद्दुद उहदे ते कीता गया। उस वक्त नस्लवाड़ी लहर जोरां ते सी, नक्सलवाड़ी लहर। उदासी ना तां जबर अगे चुकिया ते ना ही उन्हें अपने किसी साथी की सरगर्मी का कोई किसी किस्म का भी राज खोलिया, पर अन्नी ते गुजी कुटमार कारण शरीरक भज तोड़ उहदी बहुत होई सी। लोग घोलां नूं जबर नाल दबाउणा किन्नी प्यारी आवाज है दोस्तों, और किन्नी दर्द भरी आवाज है। गल इस तरह भाई 1971 जदों पुलिस दे स्पैशल स्टाफ ने उदासी जी नूं गिरफ्तार किया ते शरीरक ते मानसिक अन्ना तशद्दुद उहदे ते कीता गया। उस वक्त नस्लवाड़ी लहर जोरां ते सी, नक्सलवाड़ी लहर। उदासी ना तां जबर अगे चुकिया ते ना ही उन्हें अपने किसी साथी की सरगर्मी का कोई किसी किस्म का भी राज खोलिया, पर अन्नी ते गुजी कुटमार कारण शरीरक भज तोड़ उहदी बहुत होई सी। लोग घोलां नूं जबर नाल दबाउणा ये बंदे खाणियां सरकारां दे काम ने।

ऑफ कोर्स प्रभाग रेडियो प्योर रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ ऑन यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर वॉकिंग आईज एंड एक्सपीरियंस वी आर ऑल

के पग घुंघरू पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी नाची थी नाची थी नाची थी के

लगाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, जैसे यमला पगला दीवाना।

हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं जगवंत खेड़ा, थोड़ा होस्ट ते थोड़ा दोस्त, अमरीका दे स्टेट नॉर्थ कैरोलिना दे शहर टोरंटो। जी दोस्तों, आ तुसी सुन रहे हो www.parvazradio.com खेड़ा लाइव शो, जानकारियां भरपूर। दोस्तों, आज असी गुरु रविदास जी दे बारे दे विच थोड़े नाल कुछ जानकारियां दी सांझ पावांगे जी, ते उना दे शब्दां नूं आवाज देणगे दिल्ली तों आराधना सिंह जी, जो के बहुत ऐसे कट सिंगर हन, गायक हन, जो के गुरु रविदास जी दे 41 दे 41 शब्दां नूं गाउण दे विच महारत हासिल करदे हन जी। आराधना सिंह जी जो दिल्ली विच रहिंदे हन, उना दे विचो एक है जी, ते आज असी उना दे मुखार बिंद तो श्री गुरु रविदास जी दे कुछ शब्दां दी सांझ थोड़े नाल पावांगे जी। साडे नाल जुड़ चुके हैं।

बुनियाद है मेहरबान दोस्तों। ते परवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूब सुरत सुरोते ए मोहब्बत दा पैगाम देने वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा वाह वाह।

आवाज दी दुनिया दे मेहरबान दोस्तो ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूबसूरत श्रोते ए मोहब्बत दा पैगाम देण वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा खूबसूरत लबां ते हास्से खिलारदा।

We are only phone callers. Dosto, bilkul, asi tuhade to phone call rahe hi ते आज जी शायरो शायरी दा प्रोग्राम गल्ला बाता दा प्रोग्राम यानी के तुहाडा अपना प्रोग्राम तुसी दोस्तों मिनू सिर्फ एक मिस कॉल मारनी है ते जदों तुसी मिनू मिस कॉल मारो ओ बहुत छोटी सी होनी चाहिदी है एवें एक बैल वजे जां दो बैलां वजे ते मैं जो ही पॉसिबल होवे तुहानू कॉल बैक करांगा ते तुसी मेरी जदों कॉल पिकअप करोगे तुसी ऑन एयर होवोगे। सो आओ दोस्तों तुसी की लिखदे हो किस तरह दा लिखदे हो आओ साडे सारयां नाल सांझा करो फिर सारा कुछ सांझा विचार वटांदरे दे विचों सोहणियां गल्लां निकलदियां ने। दैट्स द ब्यूटी ऑफ योर लवली रेडियो स्टेशन। बिल्कुल सज्जनों, दैट्स द ब्यूटी ऑफ योर लवली रेडियो स्टेशन टू लिसन अस वर्ल्ड वाइड लॉग ऑन www.parvazradio.com। दोस्तों अपनी प्ले स्टोर ते जाके ऐप डाउनलोड करो, रेडियो बजना शुरू हो जाएगा। लेकिन एदे नाल रलदे मिलदे कई रेडियो अपीयर होणगे। तुसी दो स्पीकरां वाला साडा लोगो है येलो रंग दा, आप ते तुसी सुनदे ही हो। मेहरबानी होवेगी जे पंजा सत्तां दसां मित्रां नूं साडा मतलब कि तुसी डाउनलोड करवाओगे, वी शैल बी रियली ग्रेटफुल। ते मैं हां जी आपदा होस्ट ते दोस्त सुच्चा सिंह बाजवा। स्वीकार करो जी मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, अस्सलाम अलैकुम, नमस्कार, and a very very very good evening all the lovely and sweet people of this planet. Gairat mand o jawan jehda ayan khirton lade, arja ji ke gairat mand o jawan jehda ayan khirton lade, rab warga insaan kadam maan de jo phade, रब वर्गा इंसान कदम मां दे जो फड़े, ओ यार यारां दा जे ओ जेड़ा वर्दियां च खड़े, यार यारां दा जे ओ जेड़ा वर्दियां च खड़े, ते ओ धरती दा रब आजादी साडी झोली पाए खुद फांसी उत्ते चढ़े। भाई उपरले रब नूं ते कदी किसे ने वेख्या नहीं, पर धरती दे रब, आ जे धरती दे रब। नंद लाल नूरपुरी ने भी लिखिया कि ओ दुनिया दे बंदेओ पूजो पूजो उन्हां इंसानां नूं देश दी खातर वार गए जो प्यारियां प्यारियां जन्मां नूं। भाई ओ धरती दा रब आजादी साडी झोली पाए खुद फांसी उत्ते चढ़े, ते ओ सारे योधे जिन्हां ने सानू आजादी दा उपहार दिता, भगत सिंह वर्गे, राजगुरु वर्गे, ते आप फांसियां दे सब सारे जिन्हां दा योगदान है, सब तो पहला उन्हां नू नमस्कार सारिआं नू। सो दोस्तों गल इस तरह वा भई अज ना संडे है ते 10 मई है जी, ते टेम्परेचर साडे इलाके दा जी 23, बहुत सोहना मौसम जिन्हू आपां कह सकदे आं, वंडरफुल, ना गर्मी ना ठंड। टाइम पर साडी स्टूडियो दी सोहनी जी घड़ी ते इस वक्त दोस्तों जर्मन दे 3:15 हो गए ने, ते साडा टेलीफोन नंबर जेड़े ਨਵੇਂ ਸੱਜਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਪਲੀਜ਼, 0049-171-486-9514, 0049-171-486-9514 ਜੀ।

उनसे छुप छुप के सनम रात भर जागेंगे हम, उनसे छुप छुप के सनम आंख झपके ना कभी चांद तक।

आजा पिया तोहे प्यार दू, ओ गोरी मैया तो पे वार दू, इसलिए तू इतना उदास, सूखे सूखे होंठ अखियों में प्यास, इसलिए इसलिए ओ आजा पिया।

0: जब लखपुर वाले बारिश क्यों ना कायम उठाई।
1: वाह जी वाह, वंडरफुल सॉन्ग, बहुत खूबसूरत गाना। दोस्तों उम्मीद है आप जी ने भी पसंद आया होगा। तो मैं अपनी एक रचना थोड़े नाल पेश कर दा, उहदे बाद आप जी वाल आवांगा, आप जीआं दीआं कालां लाऊंगा। मैं मुकद्दर दा मुहताज नहीं हां,

0: चतुराई तुझ सुर की समझ नहीं आई, तूने कोरी घास ही खाई। अरे घोड़े
1: घोड़ा बोला
0: घोड़े

एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुटत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात, अरे आय आय आय आय आय आय आय आय, चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार, अपने ही जाल मेरे मन के द्वार फंसत जात।

छिड़का के वे जान जान लंगे साडी बीही नू चढ़ा के वे लथे ओदा सुहाग दावे कोका लथे ओ

किन्नी प्यारी आवाज है दोस्तों, और किन्नी दर्द भरी आवाज है। गल इस तरह भाई 1971 जदों पुलिस दे स्पैशल स्टाफ ने उदासी जी नूं गिरफ्तार किया ते शरीरक ते मानसिक अन्ना तशद्दुद उहदे ते कीता गया। उस वक्त नस्लवाड़ी लहर जोरां ते सी, नक्सलवाड़ी लहर। उदासी ना तो जबर अगे चुकया ते ना ही उन्हें अपने किसे साथी दी सरगर्मी दा कोई किसे किस्म दा भी राज खोलिया, पर अन्नी ते गुजी कुटमार कारण शरीरक भज तोड़ उहदी बहुत होई सी। लोग घोला नूं जबर नाल दबाउणा, ये बंदे खाणियां सरकारां दे काम ने। वह बंदे नूं कई तरह मार दियां ने, एक पासे शरीर ते जबर दा घाड़ा, दूजे पासे मानसिक तौर ते धमकाउणा। इसे करके इनकलाबियां दे परिवार ते बच्चियां ते भी जबर कीता जांदा है, ताकि मानसिक तसीहां अगे इनकलाबी गोडे टेक देण। पर उदासी जी जुल्म दी वाशर अगे अपने अकीदे तो बिल्कुल ना फिरके, वह अपनी सब तो प्यारे बच्चे घर उन्होंने उन्हां दी भी परवाह ना की, ना ही मौत तो डरते सन। मैं उन्हां दा गीत नहीं, मेरी मौत तो ना मेरी मौत से ना रोयो, मेरी सोच नूं बचायो। ए जुल्म अते कुट ने उहदे ते उहदे गीतां विच होर भी जोश भरिया, उहदी बोली नूं लोकां ने होर नेड़े लै आंदा। उहदी बोली ने जां उहदे बोलां ने, संत राम उदासी लोकां दे नेड़े सी, असलो ही नेड़े, सच्चे अर्थां विच लोक कवि, किसाना किरतियां ते गरीबां दा मसीहा लिखदा है कि तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। जिथे ओ उच्च कोटी दा कवि, लोग युद्ध दा सिपाही, वधिया सोच दा मालिक, उथे ओ वधिया पुत भरा पति ते बच्चियां नूं प्यार करन वाला वी, रब वर्गा प्यो जिन्हें समाजिक फर्जां नूं युरत ते दृढ़ता नाल निभाया। अक्तूबर 1986 उन्हां नूं हजूर साहिब तों एक चिट्ठी आई, जिस विच छोटे साहिबजादियां दे शहीदी गुरपुरब ते इन्हां नूं आउण दा सद्दा दित्ता गया। वापसी ते गड्डी विच उदासी जी दी भेद भरी हालत विच मौत होई गड्डी दे विच। दोस्तों उस समय पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे डॉक्टर बलकार सिंह उन्हां दे नाल सफर कर रहे हैं, कट्ठे बैठे हैं, एक बंदा होर सी, ये तिने एक दूजे के आपस में वाकफ सन बहुत वधिया तरीके नाल। उन्हां दी मौत बारे डॉक्टर बलकार सिंह हुणां ने कोई तसली बख्श जवाब नहीं दिता। सजणों पंजाब दे उगे कवि ते नक्सलवाड़ी योधे नूं रेलवे स्टेशन ते लावारस कह के साड़ दिता गया, ते घर टैलीग्राम पहुंची इन्हां दे के संत राम उदासी फाउंड एक्सपायर्ड एट मनमट रेलवे स्टेशन। आ जरा नोट करियो, जे ओ जिस तरह मतलब कि अहे अगे पिछे दा पता ही नहीं सी, हां जी लावारस है, ते एक टैलीग्राम तुसीं उन्हां दे घर किदां भेज दित्ती भाई, जे ओ लावारस है, पता ही नहीं ओह कौन है कौन नहीं। जदों तुसीं टैलीग्राम भेजी है तां मतलब तुहानूं तुहाडे कोल उन्हां दा एड्रैस हैगा ते हैगा, ते फिर ओह लावारस किदां होया। ते घर वाले उन्हां दे अंतम दर्शन भी ना कर सके, हां जी किड्डा फ्रॉड ते झूठ है। भला राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त पंजाब दा उगा शायर, हजूमा दे दिलां ते राज करन वाला, आजादी दिवस ते जिन्हूं लाल किले ते 26 जनवरी ते सद्या जांदा सी,
ਯਾਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਲਾ ਵਾਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅਹੇ ਇਹ ਲਾਵਾਰਸ, ਜੇ ਲਾਵਾਰਸ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ? ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੋ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਲਾ ਵਾਰਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਉਦਾਸੀ ਲਾ ਵਾਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੱਜਣੋਂ ਲਾ ਵਾਰਸ ਵਿਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਰੇਡੀਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਤੇ ਦੋਸਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਜਣੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਬੀਰ ਬੱਬੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਬਾਦਲੀਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾਂ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਸਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆ ਲਓ ਜੀ।

ऑफ कोर्स प्रभात रेडियो योर ओन रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ आर यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर वॉचिंग आईज एंड एक्सपीरियंस वी आर ऑनली

बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं।

सो दोस्तों गल इदा है भाई, सोचने वाली गल ए है कि हजारां साल बीत गए ने ते 80 साल सानू आजाद होया नू भी हो गए ने। ठीक है जी, साडे च कोई बदलाव या क्रांति क्यों नहीं आई, चक्कर की है? साडे तो पिछले अगे निकल गए, रौला रप्पा बहुत सुनिया पर अंत विच ओहो ही बाबा रामदयाल ते ओहो ही भूरी खोती, सारे खोते पार्लीमेंट च बह गए ते साडी खोती बोर्ड थले खलोती। हां जी, बदलाव नहीं आया कोई। हुण तुसी सोचते होगे कि क्यों बदलाव नहीं आया। हां जी, साडा रहण सहण बदल गया, लफजां दे मायने बदल गए ने, साडियां चलाकियां बदल गईयां ने, असी झुग्गियां तो कोठियां ते आ गए हां, और सैकलां तो कारां तो हवाई जहाजां तक पहुंच गए हां। हुण असी चाची नूं आंटी कहिंदे हां, हां जी, ते चाची नूं आंटी कहिंदे हां, ते पानी नूं वाटर कहिंदे हां, असी फुफड़ नूं अंकल कहना शुरू करता, असी तब्दीली नहीं आई है। साडी भाषा बदल गई, लकोकतियां बदल गईयां। जदों खोतियां तो मोटरसाइकलां ते ही आ गए, साडियां नजरां ते अदावां भी बदल गईयां। हर तरह दी मशीनरी आ गई, और कंप्यूटर युग आ गया, चारे पासे बदलाव ही बदलाव है। ठीक है प्यारे भारतीयो, ए सारे अविष्कार जेड़े तुसीं गिण रहे हो, बदलाव दे जड़े ने, ए विज्ञान ते पछम दा दिता है। भारतीयो, तुहाडा तां लगभग एदे विच जीरो योगदान है, ते जीरो कार्ड भी भारत दी है, ते जां फिर भारत दे झंडे च डंडा तुहाडा। कोई अंग्रेज सी ना, उन्हें वो पुछया बाजार विच भी आ फलाना चिट्टा रंग ते और जापान आलियां दा हरा रंग उन्हां दा बसंती रंग उन्हां दा ते झंडे च तुहाडा किहड़ा रंग है भारतीयो, ते भारतीय जिहड़ा जवाब देण लगा कहिंदा झंडे च डंडा किहदा साडा, हां झंडे च डंडा तुहाडा। पहला तां तुसी गुलाम सी, ठीक है जी, पिछले 80 सालां तों तुसां कोई अंतरराष्ट्री खोज कीती है, सिफारशी टट्टू, नकलां मारन वाले, डिग्रियां मुल लैण वाले आविष्कार की करनगे यार। एक बारी ना एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट दे स्टूडेंटा ने जहाज बना लिया इंडिया च, बड़ी वड्डी गल है, जहाज बना लिया, ते उहदे अट्टे लगे ना जदों उहदी पहली फ्लाइट लैण, ते उहदे च सारे प्रोफेसर बह गए, ते प्रोफेसरां ने कहा कि अहीं पैराशूट तों बिना नहीं बहना, की पता स्टूडेंट ने किदां दा जहाज बनाया, सारयां ने पैराशूट पा ले, ते प्रिंसीपल अगली सी पायलट दे नाल दी सीट ते बह गया, ते कोई पैराशूट नहीं लिया, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। प्रेस रिपोर्टर भी आए सन इधरों उधरों, ते प्रेस रिपोर्टर ने प्रिंसीपल नूं पुछया, सर पहली बारी जहाज उडाउण लगे ने मुंडे, ते पहली बारी मतलब कि तुहानू कोई खौफ नहीं, तुसीं पैराशूट भी नहीं लिया हैगा, हालांकि सारे प्रोफेसरां कोल पैराशूट ने, पायलटां कोल भी पैराशूट।

पेट में मुकड़त पाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, यमला पगला दीवाना हो रहा।

सो दोस्तों, मैं गलबात कर रहा सी कि उस वक्त जेड़े लोकां ने दावा किया सी कि धरती चपटी नहीं गोल है, उस वक्त दे जमाने ने उन्हां नूं सजाए मौत दित्ती। ते भारत दे विज्ञानियां दी गल सुन लो, असी टेकनीक ते पश्चिम दी है ना नकल मार के जे कुछ बना भी लईए, धार्मिकता दे पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं गल कर रहा, जदों मंगलयान जदों भारतीय विज्ञानियां ने बनाया ते आपे बना के बना लिया, फिर नारियल भन के धूफा जगा के उदी पूजा करन लै पे, हद हो गई। इहदे च की तुसीं जिहड़ी मशीनरी बनाई है कोई देवता बनाता है, तुहानूं कोई रब बनाता जिहदी पूजा करन रहे हो, हाथीं दा तुसीं इह सारा कुछ बनाया है। भावें टकनीक किसी होर कंट्री दी सी, कोई गल नहीं, पर तुसीं चलो बनाया है ते इहदे च पूजण वाली इहदे नक्क घसाउण वाली किहड़ी गल है। रफेल जहाज जदों लै गए, राजनाथ सिंह हुणां ने उहदे टायरां थले निंबू रखे, नारियल तोड़े, हांजी उहदी आरती उतारी, उह जहाजां दी पूजा कीती। ओए जिहड़े इंजीनियरां ने इह जहाज बनाए होणगे उह तुहाडे बारे की सोच रहे होणगे कि तुहानूं कुछ होर भी याद है, चेते आउंदा कोई पूजण तों सवा, चूहियां तक पूजण तों सवा, हर उह चीज जिहदी समझ ना आए उहदे अगे मत्था ही टेकी चले जाणा, नदी अगे मत्था टेक देना, दरख्त तले अगे मत्था टेक देना, फलानी चीज नूं इट्टां दा ढेर जिथे लगा होएगा उथे जा मत्था टेक देना, ए अंधविश्वास है, धार्मिकता नहीं। वो जहाजां दी पूजा कीती गई जी, निंबू नुंबू धर के, ए जहाज की गल है, तुहाडे पूजा करन नाल पेट्रोल घट खाणगे या तुसीं इहदे ते कोई फायर करोगे तो बंदे ज्यादा मारनगे, या इन्हां नूं कोई गोली टच नहीं करेगी दुश्मन दी, की किहड़े पॉइंट ऑफ व्यू दे उत्तों तुसीं मतलब कि उन्हां दी पूजा कर रहे हैगे सी। मैं अपनी धार्मिक मैंटेलिटी की गल कर रहा भारतीयां दी, जहाजां दे नहीं कोई इतराज, मैं सोच की गल कर रहा भाई, असी सोचते किदां वा प्यारे भारतीयो। पिछले 2000 साल तो तुहानू धर्म का कोई फायदा होया? हां जी, हो सकता धर्म फायदेमंद ही होवे, पर तुहानू फायदा नहीं कोई होया, नुकसान ही होया इहदा। सारी दुनिया का मार्टिन लूथर वर्गे जिहड़े हन पूरा जोर ला के उन्होंने प्रचार किया कि धर्म एक मकड़ जाल है, अंधविश्वास उहदे तों भी वड्डा मकड़ जाल है। आओ देश का विकास अरदासा करके नहीं, पखंड करके नहीं, दीवे जगा जगा धूफा जगा जगा देश का विकास नहीं होना, धूफ का आरतियां दा अरदासां दा विकास नाल कोई संबंध नहीं। तुसीं एवें अपने मन की शांति वास्ते सोच है तुहाडी कि यह अरदासां नाल एवं हो जाएगा, नहीं, हत्थी करके होना है, कोशिश करके होना है। आओ देश का विकास अरदासां करके नहीं, खुद मेहनत करके करिए, रब को मंगण दी थां चीजां खुद पैदा करिए। अहे बाबा टल पक्की पकाई कल, मंगण दी थां आओ खुद पैदा करिए, स्वर्ग नरक नूं मारो गोली, अपना मुल्क ही स्वर्ग बनाइए। दोस्तो ए बिल्कुल सच है, असी अपना मुल्क स्वर्ग बनाउणा है के नरक बनाउणा है, ए देश दे नागरिकां ते सरकारां दे हाथ विच हुंदा है।
ਤੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਐਂਡ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਕੌਆ ਕਾਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੌਏ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਕਦੀ?

आवाज दी दुनिया दे मेहरबान दोस्तों ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूबसूरत श्रोते ए मोहब्बत दा पैगाम देण वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा खूबसूरत लबां ते हासे खिलारदा।

वाह वंडरफुल सॉन्ग, क्या बातें ने, किड्डी सोहनी आवाज, किन्नी प्यारी आवाज मैडम नसीबो लाल जी, लाल जी हुई। गल इस तरह के जो मैं फील करदा वो ये कि लता जी हुनी, मलका इतरंदम नूर जहां जी, आशा उषा ते जिन्ने भी मतलब की है टॉप दियां सिंगर होईयां ने, नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी सिंगर है, पर गलत हत्थां दे विच आ जान करके ते अनपढ़ होण करके बेचारी थोड़ी जिहड़ी हुंदे ने ना बैकवर्ड लोग जिहड़े पढ़े पढ़िया इलाका नहीं हुंदा, पर इहदे आर्ट विच इहदी आवाज जिहड़ी आ ओह टक्कर वड्डियां वड्डियां ओलंपिक दियां जिहड़ियां प्लेयर रहियां ने साडे, जिन्हां दे मैं नां लए ने, जिन्हां ने दिल ते राज कीता, बिल्कुल नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी आर्टिस्ट है। सो सज्जनो, मैं ना तुहानू अपनी एक रचना सुणाउणा, ओहदे बाद मैं तुहाडे वल आ रहा, ते तुसीं रेडी हो जाओ ते मैं टर्न बाई तुहाडे वल आवांगा सारिआं वल ही, क्योंकि अज प्रोग्राम ही तुहाडा। अर्ज इस तरह सज्जनो के गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है, गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है, ते गरीब क्यों अकल तो दूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गुरूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गुरूर हुंदा, ते तरक्की क्यों पैर हैवान, टक्कर दी आर्टिस्ट है। सो सज्जनो, मैं ना तुहानू अपनी एक रचना सुणाउणा, ओहदे बाद मैं तुहाडे वल आ रहा, ते तुसीं रेडी हो जाओ ते मैं टर्न बाई तुहाडे वल आवांगा सारिआं वल ही, क्योंकि अज प्रोग्राम ही तुहाडा। अर्ज इस तरह सज्जनो के गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है, गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है, ते गरीब क्यों अकल तो दूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गुरूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गुरूर हुंदा, ते तरक्की क्यों पैर हैवाना दे चुमदी है, शरीफ क्यों

उनसे छुप छुप के सनम रात भर जागेंगे हम, उनसे छुप छुप के सनम आंख झपके ना कभी चांद तो

उनसे छुप छुप के सनम रात भर जागेंगे हम, उनसे छुप छुप के सनम आंख झपटे ना कभी चांद

वाह जी वाह, वंडरफुल सॉन्ग, बहुत खूबसूरत गाना। दोस्तों उम्मीद है आप जी ने भी पसंद आया होगा। तो मैं अपनी एक रचना थोड़े नाल पेश कर दा, उहदे बाद आप जी वाल आवांगा, आप जीआं दीआं कालां लांगा। मैं मुकद्दर दा मुहताज नहीं हां।

0: घोड़ा चतुरा
1: एक पैर है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना।
0: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात।

दुनिया के मेहरबान दोस्तों, ते परवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोतों, ए मोहब्बत का पैगाम देने वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा वाहवा, आप सब की जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा।

छिड़का के वे जान जान लंगे साजी भी नू चढ़ा के वे लथे ओदा सुहाग दा वे कोका लथे ओदा

ऑफ कोर्स प्रभात रेडियो योर ओन रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ ऑन यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर वॉकिंग आईज एंड एक्सपीरियंस वी आर ऑन

दुनिया के मेहरबान दोस्तों, प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोतियों, ए मोहब्बत का पैगाम देने वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा, वाह वाह। आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वादा करदा,

का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

0: बबी जी मेरी आवाज बस तो भाई ड्रामा ही हो रहा कोई मैं ना एक गाना ला लेना ते जिनी देर इन्हों ना आवाज नहीं ना मेरी सेटिंग हो जाती उन्नी देर फिर
1: हेलो जी
0: बबी हेलो जी हे हे कितने हाल हो बबी जी सुन रहे हो मैनू बबी जी ताड़ी आवाज जी है ना ओ मुकेश पगलूंगा दोस्तों साडा ना कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा
2: आप सोच
0: तो मैं उन्नी देर गाना ला
2: और बेल आइकन को प्रेस करें
0: गाना ला बबी जी सुन रहे हो मैनू

मुलार में मेले में अकेले फिरी बाजार सर में कौन सा बनाना बहाना बहाना बहाना मैं जाती गमला पगला दीवाना।

बाद में मुकड़त पसीन छोटी सी उम्र में वो जान तो लगाती न प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना यमला अगला दीवाना हो रहा।

सो दोस्तों एसीजी साडा अज दा प्रोग्राम ते प्रोग्राम दे विच थोड़ी जी डिस्टर्बेंस हो रही है टेलीफोन दा कनेक्शन करके उदे वास्ते एक बारी फिर दोबारा सॉरी ते देशां विदेशां सुन रहे दोस्तों आप सब नू प्यार भरी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम नमस्कार एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड इवनिंग।

0: हेलो दोस्तों,
1: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं जगवंत खेड़ा, थोड़ा होस्ट ते थोड़ा दोस्त, अमेरिका दे स्टेट नॉर्थ कैरोलिना दे शहर टोरंटो।